0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: जाते थे। पेड़ के नीचे पढ़ने पर गरीब का बच्चा मजबूर था। आज हमें वो शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं।
1: समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन, ये तमाम लोगों के अंदर, आपस में नेताओं के अंदर जो असंतुष्टि की भावना है वो साफ दिख रही है। और इस पूरे एपिसोड में हम एक ही लाइन कह सकते हैं कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है।
2: प्रस्तुत विषय जो आपका है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि जो जनता, मतदाता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद को सम्मान नहीं मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि लोगों का आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है, जनता का भरोसा है, जनप्रतिनिधियों का भरोसा है। तो अगर जनता अट्रैक्ट कर रही है तो जनप्रतिनिधि भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि वहाँ सम्मान बेहतर मिलता है।
3: Well, on that note, we're slipping into a quick commercial break. As always, the news and updates continue right here on NDTV 24/7.
4: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना।
5: बाल्टी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
5: Our pure Shahi Paneer Masala, delicious, healthy.

ये फर छत का पसीना, पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big

0: dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: स्पोक्स पर्सन है, आपने 6 MPs जो जा रहे थे, ये 4 दिन से न्यूज चल रहा है, आपने कितने MPs को खुद फोन किया जो 6 लोग जा रहे थे? संजय दीना पाटिल तो आपके घर के बड़े नजदीक रहते हैं, उनको भी आपने फोन करके पूछा क्या?
1: अरे हाँ हाँ तो वो तो अब आप सुनिए, अब आप सुनिए ध्यान से, एक मिनट
0: है, आप मुझे
1: संजय दीना पाटिल जी का, अरे पहले सुनिए तो, पहले सुनिए पद्मजा जी,
2: बोलिए बोलिए।
1: ऐसा डिबेट मेरी आदत नहीं है, ये थोड़ा सा मेरा एक व्यवहार नहीं है, एक तरफ ही बात, या तो उनकी बात पहले हो जाने दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ।
2: बोलिए बोलिए।
1: लोग ताकत में बैठे हैं, उनके पास सत्ता है, मजबूत है, पहले उनको बुलवा लीजिए, पहले उनको बुलवाइए, कमजोरों को, गरीबों को लास्ट में बुलवाइए, कोई
2: नहीं नहीं, यहाँ पे कमजोर की आवाज पहले सुनाई देती है। बोलिए आनंद जी। हाँ
1: पद्मजा जी, पद्मजा जी, संजय दीना पाटिल जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे मित्र हैं आज से नहीं 20 साल से। उन्होंने कल एक बयान जारी किया था कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी पार्टी की जो मीटिंग है पार्लियामेंट्री बोर्ड की वाली, जो पार्लियामेंट में जो ऑफिस है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। अब नहीं आए, क्या करें, अब क्या करें, कहाँ रोए जाके? हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमें आश्वासन दे सकते हैं, लास्ट में आप पलटी मार जाएंगे तो हम क्या करेंगे,
2: क्या करें? वरुण सिंह आंसर दे, देन आई गो टू सुजी बेंशान आशुतोष। यस
0: आनंद जी, आपने आपने आपने किसके थ्रू
1: सब मनगढ़ंत कहानियां, ये फिल्मी बाजी, ड्रामे बाजी, सब
0: मैंने तो खुद ट्वीट किया था कि उन्होंने कह दिया अपने फॉलोअर्स को कि मैं शिंदे सेना ज्वाइन कर रहा हूँ। आपने, मैंने सवाल से भी
1: ट्वीट ट्वीट पे देश नहीं चलता, ट्विटर पे 2 करोड़ लोग हैं देश के, 140 करोड़ की आबादी है, ट्विटर मत खेलिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी, ये ट्विटर, ये
0: मुट्ठी भर जवाब दे दीजिए। आपने कितने चलाते जो गए थे,
1: किसान चलाता है,
0: देश मतदाता चलाता है,
1: देश रिक्शा चलाने वाला चलाता है,
2: व्हाट्स योर पॉइंट
1: चलाता है,
2: यू नो रिपोर्ट सजेस्ट, सेकंड वरुण सिंह, रिपोर्ट सजेस्ट दैट उद्धव ठाकरे tried to reach out to each one of these MPs yesterday. After the press conference, when Sanjay Raut was sitting with Anil Desai, Uddhav Thackeray was on the phone and calling up each one of these guys. They were lying to him. Sanjay Dina Patil till yesterday was telling reporters, main to bhai aa jaunga, main parliamentary party ki meeting mein rahunga. Wo nahi the yahan pe, ab kya kar rahe hain uska?
0: See, Padmaja, the job of a reporter is also to read between the lines. Sanjay Dina Patil's followers were clearly told a day or two ago that he is joining Eknath Shinde's camp. How did I come to know? How did and he is talking about Sanjay Dina Patil coming out with a statement. It was Anjali Damania who came out with a statement on post.
2: Why are these people leaving? If you know why they are leaving, why are they leaving? What is the reason?
0: See, there are multiple reasons. I don't know who told you Uddhav Thackeray called them. Can Anand Dubey confirm it? Uddhav Thackeray, 3 days ago when he came to know that his rebel MPs were leaving, he made his deputies call them. He didn't even pick the phone to call them. That is the exact news that we came to know.
2: Okay.
0: Reliable.
1: So why? Okay. Why you got a ticket with us? हमारे साथ टिकट क्यों लिया? क्यों हमारी पार्टी से टिकट लिया? क्यों चुनाव लड़ा? क्यों हमारी मेहनत को बर्बाद किया? क्यों एमपी बने हमारे नाम से?
0: जाओ खुद लड़ लो,
1: जाओ बना लो कोई पार्टी, लड़ लो चुनाव।
0: ये सवाल जो है ना,
2: this the question.
0: As I have been saying, it all this thing, but all these six events were chosen by Uddhav Thackeray in 2024 to contest the elections. It raises questions on the political acumen of no one else but Uddhav Thackeray and Aditya Thackeray who were leading the party. All these six events were given candidates and tickets by them, not by Sanjay Raut, not by Anand Dubey, not by anyone else.
3: The leadership issue.
2: Okay, the question is all going to be asked of Uddhav Thackeray, his acumen, his accessibility, Ashutosh. Ashutosh and Tuin Sinha, yes.
4: देखिए पद्मजा, हमारे उत्तर प्रदेश में ना एक कहावत है, हर शादी में मामा और फूफा ये रूठ जाते हैं। जो आनंद जी कह रहे ना, आके मिल लेते एक बार, बता देते, अरे बात करने से वो मामा फूफा मान जाते शादी।
5: ये मामा फूफा नहीं मानने वाले हैं, इनको इनको इनको बाकायदा अलग तरीके की पॉलिटिक्स। आपको याद होगा, यू रिमेम्बर व्हेन द उद्धव ठाकरे पार्टी ब्रोक इनटू टू बिफोर द पार्लियामेंट इलेक्शन, व्हाट शरद पवार सेड, Uddhav can't handle his own party.
2: Yeah.
5: Now, what happened next? Sharad Pawar couldn't handle his own party. It's not that easy. It's easy to blame, accuse Uddhav Thackeray that can't handle it. The real forces are breaking the party, somebody else. Some other thing is happening in this country. It's not a joke that the TMC is almost destroyed. Today, Shiv Sena is being destroyed. Second time. And tomorrow, you never know, Samajwadi Party is also going to be destroyed. So whatever is happening in this country is basically the forces who have no trust in Indian democracy, have no trust in Indian constitution. They are out to break every political party in opposition and want to make this country opposition mukt. That simple logic.
2: But

0: पद वचन जी जरूरी नहीं है हम वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज द ओल्डेस्ट एलाइज वी बिलीव इन आवर आइडियोलॉजी द आइडियोलॉजी व्हिच हैज ब्रॉट अस टुगेदर इट इज अ फेविकोल का जोड़ एज दे से सो देयर इज नो नीड आवर इक्वेशन देयर माइट बी बोथ आर सेपरेट पार्टीज वी आर आवर ओन एंबिशंस सो आगे पीछे हो रहा है लेकिन कदम कुछ एक साथ
1: Okay, Ashutosh wants to come in. Ashutosh, then Varun.
2: Take a second. Before Ashutosh comes in, good. I just wanted to make a point for Ashutosh also. Just 30 seconds, not more than that. You know, Anand Dubey ne do cheeze thi. You spoke about BJP leaders, Sena leaders jumping to BJP. In the assembly elections, there are many people from BJP who went to Shiv Sena. Shaina NC, Murji Patel, and they are still with Shiv Sena. They haven't come to BJP. So that has happened, already has happened in the assembly election. Secondly, the basic point that Anand Dubey said, ki Raja, ye dikkat unki ye hai, ki abhi bhi ye Raja wali mentality mein atke hue hai, ki hum Raja hai, hum Raja ki tarah treat karo. Aur isliye,
3: maine kaha tha ki bade Raja chote Raja ko, aapko bade Raja bola hu, Raja ji, humne to chota Raja bola apne aapko, bade Raja aap hai, you are the big king.
2: There
3: is small king.
2: We have had Congress I. Janata Dal in 1980s was a huge party broke into fragments. Today we have Janata Dal secular. Today you have Rashtriya Janata Dal. Okay. You have Janata Dal United. So let me be very frank. ऐसा नहीं है कि parties कभी टूटी नहीं हैं. Congress के different हिस्से हुए हैं. तो ये तरीके से the way it is being explained as if like since the time and let me be very honest I'm not saying that BJP isn't behind it the BJP is the mastermind of it Shiv Sena is the mastermind of it they want leaders Tuhin has agreed to it that we want numbers and every political party want numbers so they are breaking it
1: okay so the question should be asked Ashutosh of the leadership of Uddhav Thackeray why is his leadership weak and inaccessible
4: no but I'm telling you, it's the most easy narrative. It's most easy argument. Uddhav Thackeray is to be blamed. Mamata Banerjee should be blamed. Then Mamata Banerjee should be blamed. Sharad Pawar should be blamed. These are the top tall leaders of the country. Mamata Banerjee has been a chief minister for three terms for 15 years. Now look where the party is. So let's not get into these kind of things. Uddhav Thackeray is to be blamed. And what about Eknath Shinde? When in 2019. When the Shiv Sena was forming government with Sharad Pawar and the Congress Party, did Eknath Shinde resign then? Did he take a principal stand at that point? No, he did not take a principal stand at that point of time. Later, when the pressure was on him, he went to Baroda, and from Baroda he had gone to the Guwahati. So he was so principled about the Hindutva. He was so principled about the ideology. He should have gone to the Matoshri in 2019 when the government was being formed and Uddhav Thackeray was becoming the chief. He did not do that. So let's not spread lies here.
1: Susie Ben responding.
4: The political interest is important.
0: You get your facts right. It was Eknath Rao ji, our Pramukh Neta, who was opposed in the strongest possible words
4: party,
0: for 2.5 years. Ashutoshi, for
4: did
0: 2.5 years. He gave
4: did
0: them
4: he
0: time
4: the party, he became a cabinet minister.
0: To correct
4: he became
0: his
4: a cabinet minister there.
0: What had happened?
4: He enjoyed the fruits of fruits of
0: no, no, Ashutoshi.
1: Okay, you know, I want to address the elephant in the room, and all of these numbers are being totting up, and you need to see this, Tuhin Sinha, because today when people are wondering why is there this sudden influx of people into the NDA fold, look at where things stand right now in terms of numbers. The magic mark is 360 for two-thirds majority to come for the NDA. Right now, they are short by 67. NDA stands at 293, INDI at 234. Now, take a look at how things have changed. You've got 20 MPs of the TMC being added in the form of NCPI. Then add to that the MPs who are coming in from Shiv Sena. DMK, we are assuming, is also going to side with the NDA, 22 of their MPs. Shiv Sena, UBT, 6 of their MPs break away. Then you're short only by 19. How do you then make up the gap of this 19? There are others who could potentially also join the NDA fold. YSRCP could extend its support. You've got 3 independents, JMM 3, NCP Sharad Pawar, 8 MPs that everyone is talking about right now, whether there is a flutter there in the NCP fold, and Akali Dal also has one MP, which means that NDA will be able to touch its two-third mark. And that is the big question everyone is asking Tuhin Sinha, if all of this is a part of Operation 360.
5: No, no, like I mentioned, I am not an astrologer, so I don't know where that figure is going to go up to. But we will practice, if at all, you know, we need numbers to pass some historic reforms, we will follow a very sanitized process. We will not, you know, to the best of my knowledge and understanding, these people who are breaking away from their respective parties are not going to join the BJP. They may become a separate entity or they may join some other party. You know, my point is, मैं आनंद अपने मित्र आनंद दुबे को आज सुन रहा था और बहुत दुख होता है, बहुत अच्छे वक्ता हैं वो. आज जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे थे, जिस तरह से वो जस्टिफाई कर रहे थे, संजय राउत जो है इतना संघर्ष किया है हम लोगों ने कि गुस्सा आ गया होगा. आपको पता है हमें भी गुस्सा आया था 2019 में जब आप लोगों ने ये जो डिसेप्शन, ये बैक स्टैबिंग का सिलसिला शुरू किया था हमारे साथ. प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर आपने असेंबली इलेक्शन लड़ा था और तब जाके आप लोग कांग्रेस में मिल गए थे. हमें भी गुस्सा आया था, लेकिन हमने गालियां नहीं दी थी. हमने बस इतना कहा था, विनाश काले विपरीत बुद्धि. और तब से लेकर आज तक पिछले 7 सालों में इतनी बार उद्धव ठाकरे ने विनाश काले विपरीत बुद्धि का परिचय दिया है कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी इतनी गलतियां नहीं करता है. तो आप अगर अपने लोगों के प्रति एक्सेसिबल नहीं है, आपको अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो ये तो हश्र होना था.
1: ओके, आई एम गोइंग टू लीव इट एट दैट. यू नो दैट इज आई थिंक आपका नेचर है वो. यू आर लार्ज हार्टेड. आपने एकदम नीलकंठ की तरह सारा विश पी करके कुछ किया ही नहीं आपने 2019 के बाद. आपने बस कहा कि ठीक है, जब वक्त आएगा और शिवसेना यूबीटी के लोग जा रहे होंगे तो हम उनका हाथ थामने के लिए खड़े होंगे वहां पे.
5: मॉरल ऑब्लिगेशन टू सेव दिस उद्धव सेना. वी आर अंडर नो मॉरल ऑब्लिगेशन टू सेव दिस उद्धव सेना बिकॉज़ इट हैज ऑलरेडी डिसोन्ड द लेगेसी ऑफ बाला साहब ठाकरे.
1: ऑफ कोर्स नोबडी, आई थिंक एट दिस स्टेज नोबडी कैन क्लेम टू हैव
3: गुनाह किए.
1: लास्ट 30 सेकेंड्स आनंद जी. हाँ
3: पद्मजा जी, हमने लाख गुनाह किए हों, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी पर हम कोई आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सज्जनों की पार्टी है, दयावान पार्टी है, करुणा की सागर है. ये बहुत साफ सुथरी दल है. ये लोग कुछ गलत काम नहीं करते. हमें हालात पे छोड़ दीजिए. हम ही दोषी हैं, हम ही सब कुछ हैं. आप बहुत अच्छे लोग हैं. ये देश की जनता तय करेगी, आप और मैं नहीं.
1: बिल्कुल आनंद जी, भले से ही आप कुछ ना कहें, क्योंकि वो सज्जन पार्टी है. संजय राउत तो रोज सुबह उठ के पानी पी के 10-20 चीजें बोल ही देते हैं अपने दल के लोगों को भी और बीजेपी को भी. बट एनीवे वी विल लीव इट. ओके, ओनली 10 सेकंड्स आशुतोष जी, 10 सेकंड्स.
4: हाँ देखिए, क्या आनंद जी कोई ऐसी गारंटी देंगे कि कल ये शिवसेना के साथ बने रहेंगे?
1: कोई नहीं गारंटी दे सकता. लाइक आई सेड, नोबडी हैज एनी मॉरल ऑब्लिगेशन फॉर एनीथिंग. क्लासिक केस बिफोर अस, व्हाट हैपेंड इन झारखंड बिफोर द इलेक्शंस टुक प्लेस फॉर राज्यसभा. वी हैड बीजेपी एमएलएज हु वर बीइंग पुट अवे इन होटल्स, हु वर बीइंग टेकन टू रिसॉर्ट्स. नाउ वी हैव सीन क्रॉस वोटिंग हैपनिंग इन कर्नाटका. सीधी बात है, इन टुडेज पॉलिटिक्स जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड पीपल आर ऑलमोस्ट अनअपोलोजेटिक अबाउट इट. लेट्स सी अल्टीमेटली द डिसीजन विल बी टेकन इन द पीपल्स कोर्ट. फॉर द टाइम बीइंग, ऑल जेंटलमैन, सुजी बेंशा, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस.

0: Political war of words erupt over Tamil Nadu governor's speech. Reads full speech without disruption in 3 years. DMK slams governor and Vijay. Claims CM Vijay hand in glove with centre. The crisis continues in the AIADMK camp as leaders try to pacify C.V. Shanmugam. Already, 5 AIADMK MLAs have resigned. All right, we're cutting across live to Prime Minister Narendra Modi, who is there in France at the Viva Tech Summit. Take a listen.
1: This is a city of colors. Here is art, ideas. और इनोवेशन की प्रेरणा भी है. इस शहर को भारत के अलग अलग राज्यों से आए आप सभी लोग और भी खूबसूरत बनाते हैं, नए नए रंगों से भर देते हैं. कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है और कोई बंगाली है. भारत के हर कोने का प्रतिनिधित्व यहां दिखाई देता है. साथियों, मैं जब 14 जून को नीस पहुंचा था तो सबसे पहले भारत इनोवेट्स इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था. आज जब मैं फ्रांस से वापसी की तैयारी में हूं तो लग रहा है जैसे भारत कनेक्ट कार्यक्रम में आ गया हूं. फ्रांस में रहने वाले आप लोगों ने 21वीं सदी के भारत फ्रांस रिश्तों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बहुत बड़ी ताकत बन रही है. मैं आप सभी के लिए भारत से 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं लेकर के आया हूं. इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. साथियों, आज मैं ऐसे समय में फ्रांस आया हूं जब कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं. चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है. यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया. साथियों, बीते 12 वर्ष 140 करोड़ भारतीयों के अद्भुत सामर्थ्य के रहे हैं. 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है. एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई.

यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है। हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है। मैं आपको कुछ और फैक्ट दूंगा, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि भारत किस स्पीड और कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत का एक्सपोर्ट 35 गुना यानी 35 टाइम्स बढ़ गया है और एक फैक्ट सुनिए, भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में 100 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 100 टाइम्स। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। इसी गति, इसी प्रगति का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। साथियों, आज भारत की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस की कहानी नहीं है, सिर्फ यहां अटक नहीं जाती है, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की भी कहानी है। पिछले 12 साल में देश में 25 करोड़ लोग, यह आंकड़ा सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे, 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। यानी एक ऐसी प्रगति जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। फ्रांस में जितने घर है, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर है, उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। अब हर परिवार के पास, गरीब से गरीब क्यों न हो, बैंक अकाउंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का अभियान बना है। साथियों, इन 12 वर्षों की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ऐसी भी है जिसे किसी आंकड़ों से या अंकों से नहीं मापा जा सकता, वह है 140 करोड़ भारतीयों का आत्मविश्वास। आज का भारत और आज के भारत का युवा बहुत बड़े सपने देख रहा है। भारत का किसान नई संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की महिलाएं नए नेतृत्व का परिचय दे रही हैं। इसलिए ये सिर्फ अचीवमेंट्स के 12 साल नहीं है,

0: ये भारत की एस्पिरेशंस को नई बुलंदी देने का कालखंड रहा है। साथियों, एक समय था जब दूर दराज के गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाना वाकई बहुत मुश्किल भरा था। आज उन्हीं गांवों में बिजली भी है, इंटरनेट भी है और डिजिटल सेवाओं की पूरी दुनिया भी है। आज एक क्लिक पर कभी भी कहीं भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध है। आज मोबाइल फोन भारत के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से कनेक्ट कर रहा है। हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे डेयरी फार्मर्स, हमारी महिलाएं, हमारे स्टूडेंट्स सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं और अपने लिए नए अवसर बना रहे हैं। साथियों, आपने 125 करोड़ से अधिक आधार आईडीज के बारे में सुना है, लेकिन आज भारत सिर्फ पहचान को डिजिटल नहीं बना रहा। आज करीब 90 करोड़ भारतीयों की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित और एक्सेसिबल बन गए हैं। इससे हेल्थ केयर डिलीवरी और अधिक आसान और एफिशिएंट हो रही है। साथियों, इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें कुछ वर्ष पहले तक कल्पना जैसी लगती थी। कौन सोच सकता था कि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांवों में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है, किसकी वजह से सब संभव हुआ है? ये मोदी के कारण नहीं, वो ताकत है भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी, इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया, ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है। जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे चाहते हैं। जहां इंटरनेट पहुंचा है वहां लोग एआई और डिजिटल इनोवेशन में नेतृत्व चाहते हैं। यानी आज भारत के लोग अपने जीवन को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और भारत को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना उनका मकसद है, उनका संकल्प है, उनके सपने हैं। और साथियों, यही एस्पिरेशंस आज भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आपको भारत की स्पेस जर्नी का उदाहरण दूंगा। भारत ने चंद्रयान को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा। दुनिया ने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना, लेकिन भारत इसे अपनी मंजिल मानकर रुका नहीं। बहुत हो गया मोदी जी, अब चलेगा नहीं। आज देश गगनयान की तैयारी कर रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में अपनी जगह बनाने के लिए पुरजोश काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की यही एस्पिरेशन दिखाई देती है। सोलर पावर में भारत की उपलब्धियों की दुनिया भर में लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन भारत अगली छलांग की तैयारी कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में बड़े निवेश हो रहे हैं, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी पर तेजी से काम हो रहा है। आपने भारत के फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़ी प्रोग्रेस के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी लैंडस्केप में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे साइंटिस्टों ने किया है। साथियों, आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा है, नीस में भारत इनोवेट्स का एक आयोजन किया। ये इवेंट भारत के डीप टेक सामर्थ्य को दुनिया तक पहुंचाने का एक और माध्यम था। इसमें भारत के 120 डीप टेक स्टार्टअप्स उपस्थित थे। भारत इनोवेट्स में करीब 1400 B2B मीटिंग हुई है। कई स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आगे बढ़ी, कॉमर्शियल ऑर्डर्स के लिए रास्ते खुले, फ्रेंच और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज तथा इंक्यूबेटर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ रही है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस, ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते बने हैं। इसलिए भारत इनोवेट्स सिर्फ एक समिट नहीं रहा, यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बना है। और आज ही पेरिस में वीवा टैग इवेंट के जरिए इस यात्रा को हमने और आगे बढ़ाया। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। साथियों, एक समय था जब देशों के बीच रिश्ते केवल व्यापार से तय होते थे। आज व्यापार के साथ साथ ट्रस्ट यानी भरोसा भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। एविया में G7 बैठक के दौरान मैंने ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाने पर जोर दिया। ग्लोबल साउथ के देशों के साथ इक्वल पार्टनर्स के रूप में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारत का G7 समिट में संदेश था, ग्लोबल गवर्नेंस तभी प्रभावी होगी जब वह इंक्लूसिव होगी, ग्लोबल ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब वह शेयर्ड होगी, और ग्लोबल टेक्नोलॉजी तभी मानवता के लिए उपयोगी होगी जब वह ट्रस्टेड होगी। साथियों, भारत और दुनिया के बीच व्यापारिक रिश्तों में नई ऊर्जा नजर आ रही है। फ्रांस के साथ भारत का ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दुनिया के अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, दुनिया के हर देश, हर रीजन के साथ भारत समझौते कर रहा है। अगले महीने से भारत और यूके के बीच ट्रेड एग्रीमेंट भी लागू हो जाएगा। यह एग्रीमेंट भारत के फार्मर्स, वर्कर्स और इनोवेटर्स को अनेक नए अवसर प्रदान करेगा। साथियों, आज दुनिया अनसर्टेनिटी और डिसरप्शंस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और फ्रांस की साझेदारी विश्वास, स्थिरता और सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बन रहा है। इस वर्ष हमने भारत और फ्रांस के संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। नीस में मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो और मैंने हमारे संबंधों को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बनाने पर चर्चा की। डिफेंस से लेकर स्पेस और न्यूक्लियर तक, एआई और क्रिटिकल मिनरल से लेकर हाई स्पीड रेलवे तक, हर क्षेत्र में हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथियों, सोलर एनर्जी हो या एआई के क्षेत्र में सहयोग हो, भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। पिछले वर्ष पेरिस में और इस वर्ष दिल्ली में हमने एआई समिट को कोचेयर किया। अब हम साथ मिलकर अगले वर्ष तृष्णा सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं। ये तृष्णा सैटेलाइट जो विश्व में फूड और वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में योगदान देगा। और साथियों, यह सभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पहलों में आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप हैं जो भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। आप दोनों समाजों को समझते हैं, दोनों बाजारों को समझते हैं। आने वाले समय में टैलेंट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के नए अवसरों को आगे बढ़ाने में आप सबकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है। साथियों, भारत और फ्रांस के रिश्तों को साझा इतिहास, साझा मूल्यों और साझा विश्वास ने आगे बढ़ाया है। विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस की धरती पर बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृतियां आज भी हमें जोड़ती है। मुझे पहले नव शापेल में श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला। पिछले वर्ष प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मार्सेय के वॉर मेमोरियल जाने का अवसर भी मिला। ये हमारी साझी विरासत है। फ्रांस भारतीयों के योगदान को संजोता भी है और सराहता भी है। भारतीय मूल की नूर इनायत खान हो, जिन्होंने फ्रांस की रेजिस्टेंस के लिए अपना जीवन बलिदान दिया, या महाराजा रणजीत सिंह के साथ काम करने वाले जनरल जां फ्रांसवा अलार हो, ये सभी भारत और फ्रांस की साझा विरासत के प्रतीक है। भारत के राज्य पुडुचेरी में भी फ्रेंच विरासत की झलक दिखाई देती है। वहां का आर्किटेक्चर, वहां की कला संस्कृति और खानपान सभी में हमारे संबंधों की महक है। साथियों, इस समय फ्रांस समेत पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां भी चल रही है। इस अवसर पर मैं फ्रांस में योग को आगे बढ़ाने वाले श्रीमान महेश गात्राडयाल जी को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शार्लो शोपा जी को भी प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 100 वर्ष की आयु में भी योग के माध्यम से फ्रांस को भारत की विरासत से जोड़ा है। उनका जीवन ये सिद्ध करता है, योगा डज नॉट एड इयर्स टू लाइफ, इट एड्स लाइफ टू इयर्स। साथियों, मैं फ्रेड नेगरी जी को भी आज आदरपूर्वक श्रद्धापूर्वक याद करता हूं। भारतीय विरासत को संरक्षित करने में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, भारत और फ्रांस को कनेक्ट करने वाली एक और चीज है और वो है फुटबॉल। इस वक्त यहां फुटबॉल फीवर पूरे जोर पर है। फ्रांस में इसकी दीवानगी चप्पे चप्पे पर दिखती है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल का क्रेज सिर चढ़ करके बोलता है। खास तौर पर फ्रांस की टीम के फैंस भारत में बहुत अधिक है। फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत एक जोरदार जीत से शुरू की है। मैं फ्रांस की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ और अच्छी खबरें भी मैं लेकर के आया हूं, वो आपके लिए हैं। पिछले वर्ष मार्सेय में कॉन्सुलेट खोला गया, इससे काफी अधिक सुविधा मिल रही है। कुछ हफ्ते पहले इंडियन नेशनल्स के लिए फ्रेंच एयरपोर्ट्स पर वीजा फी ट्रांजिट की व्यवस्था शुरू हो गई है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ाना हो या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की म्यूचुअल रिकग्निशन की बात हो या फिर फ्रेंच यूनिवर्सिटीज के भारत में कैंपस खोलना हो, इन सभी पर हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अब फ्रांस में यूपीआई के उपयोग का दायरा भी और बढ़ने जा रहा है, यानी भारत फ्रांस कनेक्ट भी इंस्टेंट और आपसी पेमेंट भी इंस्टेंट। साथियों, इन सभी पहलों से हम भारत और फ्रांस को और करीब ला रहे हैं और मैं फिर कहूंगा, इस साझेदारी की नींव, इस रिश्ते की असली ताकत आप सब है। आप सब मेरे देशवासी हैं। आज जब भारत तेजी से विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तो मैं आप सभी से भारत के साथ और गहराई से जुड़ने का आग्रह करूंगा। इससे भारत की विकास यात्रा को नई शक्ति मिलेगी और आपको अपने पुरखों की धरती की सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रेम, आपके उत्साह और इस आत्मीय स्वागत के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद।
1: diaspora there in France. He clearly greeted the Indian community and said that India-France ties have perhaps nearly waited to strategic ties right now. He also said that India-France trade has also grown rapidly. And you just heard a 30-minute long big message of Prime Minister Modi's message to the Indian diaspora from Paris.

0: Maharashtra Deputy Chief Minister on June 20. In the letter given to the Speaker, the UBT MP rebel faction has mentioned that they want to leave the party because senior leaders want to merge UBT with Congress. Arvind Sawant, Rajabhau Vajay and Anil Desai were present at the meeting called by Uddhav Thackeray, while six other MPs remained absent. Uddhav Sena has taken action against the rebels, issuing a show cause notice for skipping this parliamentary meeting. Meanwhile, the security cover outside two rebels' residence has been tightened, while some of these MPs, as per sources, have been shifted to Rajasthan's resort. Take a look at the reactions coming in.
1: उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे. उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा. मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ. अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए. जाए वो अगर वो जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज.
2: सर, कोर्ट का भी रुख करेंगे?
1: देखेंगे. कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आती.
3: सर,
1: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है. देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है.
4: लोगों को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके लिए एक्सेसिबल हो, उनके लिए उपलब्ध हो. उभाटा में आज ये बहुत क्लियर है कि वहाँ की जो नेतृत्व है वो लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है. दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के जो नेता है वे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं. कभी कभी कहते हैं अपने सांसदों के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, एक दिन बाद उनको गालियां देते हैं, तीसरे दिन पर कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं. तो ऐसे जिन लोगों की जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत इम्बैलेंस्ड है, उन लोगों के नेतृत्व में कौन काम करना चाहेगा?
5: देखो, ऑपरेशन टाइगर मत बोलना, क्योंकि टाइगर एक ऐसा एनिमल होता है जो आगे से आमने सामने वहां पे लड़ाई करता है. इसको आप ऑपरेशन बाजार डेफिनेटली कह सकते हो. जो वेस्ट बंगाल में खास सांसद को फोड़ा गया उसकी कीमत करीबन 50 करोड़ के आसपास पर सांसद थी, और वो करप्शन चार्जेस निकालेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसे बोला गया. और जो महाराष्ट्र में रेट कार्ड है वो करीबन 85 करोड़ रुपीस का है. उसके साथ 250 करोड़ ये डेवलपमेंटल फंड उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल में वहां पे दिया जाएगा, और उसमें से 10 से 15% करप्शन करके वहां पे 25 से 30 करोड़ लिए जाएंगे. तो 110-120 के आसपास ये रेट वहां पे निकला है. और लोग कहेंगे मेरे पास ये रेट कैसे आएगा. डेफिनेटली देखो, अजीत दादा के केस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने हमारे लेवल पे वहां पे निकाला जो जेन्युइन है. तो ये इन्फॉर्मेशन भी जेन्युइन है जो हमारे पास. ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे सोर्सेस के माध्यम से आई है.
0: Now shifting our focus to the NEET re-examination that is all set to take place on June 21st after an alleged paper leak in the previous examination. Officials have assured candidates that the re-NEET examination will be conducted as per schedule in a fair manner, urging candidates not to be swayed by rumours of postponement on social media or any kind of paper leak. Union Education Minister Dharmendra Pradhan also chaired a high-level meeting to review the preparations for the NEET UG re-examination. This education ministry has also issued and emphasized that there is a need to maintain transparency. They will be issuing full and security measures will be upped, and also students are assured that there will be no leak of any kind. And instead of any leak, the security measures are in place. According to the ministry, the discussions focused on operational preparedness and assurance being implemented at examination centers across the country. According to the information shared by the NTA, the NEET UG 2026 examination will consist of 180 questions carrying a total mark of 720. But students fear of the transparency that is being assured by the government. The students are asking questions about how the paper leak will be controlled. Meanwhile, the Telegram CEO has also challenged the temporary ban put up on the app till June 22nd. Remember, the centre has said whilst placing an affidavit in the Delhi High Court today that it has been done so to ensure that there is no leak that will take place in the next examination. Meanwhile, the Delhi High Court has reserved its order on the Telegram ban app, but the controversy only spirals as the opposition is questioning the government and its surety.

0: by Shiv Sena MLA and Maharashtra Minister Pratap Sarnaik, and finally Om Raje Nimbalkar landed in Delhi at 4:30 a.m. accompanied by Shrikant Shinde himself. All these MPs were then housed in a hotel in Noida before their meeting with the Speaker. And once that meeting was done, they didn't stay here. All of them flew out of the city again. Some of them to Tirupati, some to Varanasi, some to Ayodhya, and some to Mumbai. It seems it's time, they think, they seek some divine intervention. So the question then is, this split is final, but what is driving this split? Is it the internal abuse and departure from ideology that these rebels are claiming in that letter? Or are these the external pressures of power and pelf that are being put on them by the Shiv Sena and by the BJP? Joining us on the debate, we have Anand Dubey of the Shiv Sena UBT, Tuhin Sinha of the BJP. Varun Singh, journalist, joins us along with political analyst Ashutosh. But my first question is to you, Susie Ben Shah, spokesperson of the Shiv Sena. What's going on? 50 crore rupees, some people saying 70 crore rupees, 15 crores given as advance. Is all fair in love, war and politics now?
1: Good evening, Padmaja, and greetings to all my dear fellow panelists. You see, the way you yourself gave the opening statement, the gentleman, Mr. Raut, has completely lost his mind. He's lost his mental stability. And the confusion, the press, one press conference from the other. First, they were saying they are tightly with me. Second time, they abused them, the most derogatory abuse. I believe they also compared their MPs with prostitutes, then threatening them. I mean, I don't understand. Since you, when you say that they are our own MPs and you talk to them like that, I mean, let me tell you this, by this language, by this language, the remaining MPs, the MLAs and the corporators also, Dubey ji, I'm warning you, wo bhi aapke saath nahi rahenge. क्योंकि ये हम दो हमारे दो का जो परिवार है और पूरी पार्टी हम दो हमारे दो से नहीं चल सकती है. दीज आर वेरी एस्पिरेशनल पॉलिटिशियंस. दे आर सन ऑफ द सॉइल. दे हैव रिजन फ्रॉम द रैंक्स, राइट फ्रॉम मे बी जिला परिषद टू द सीट इन द पार्लियामेंट. दे नीड रिस्पेक्ट. दे नीड अ लीडर विच दे कैन ट्रस्ट, हु वॉक्स द टॉक विद अस, हु फाइट्स विद देम, हु हिट्स द ग्राउंड विद देम. नाउ यू टेल मी, यू हैव बीन वॉचिंग द जिला परिषद इलेक्शंस, टेक जिला, हैव दे इवन कैंपेन्ड? हैव दे राजा
0: सुजीबेन, why are all of these MPs hurt? Are they hurt by Sanjay Raut's outburst? Are they hurt by not being given funds? Are they hurt by the inaction of Uddhav Thackeray? What is the reason? I mean, theek hai, they are very, you know, abhi wo ahat ho gaye hain kyunki Sanjay Raut unko gaali de rahe hain, par unke komal hriday mein abhi tak kya problem thi? Sanjay Raut has only started abusing last 2 days.
1: No, Padmaja, the last straw was when the MPs came to know that on the 5th Vardhapan Divas, which is on the 19th of June, the Prince Aditya Thackeray, who just won by 7,000 votes, was to be anointed as the working president of Ubata. How would these people who have served the party, who believed in the ideology of Balasaheb Thackeray, can succumb to people?
0: Okay, answer this, Anand Dubey. देखिए अब इतने time से जो लोग MP थे, इतने time से जो लोग पार्षद से ऊपर उठे थे, अब वो नहीं झेल पाए. उनको कोई तोड़ नहीं रहा है, वो खुद ही टूट करके जा रहे हैं.
1: टूट के जा रहे हैं.
2: पद्मजा जी नमस्ते. एक हिंदी में कहावत है कि हमारी दही खट्टी है तो दूसरे को क्या दोष देना. जो सांसद हमको छोड़ के जा रहे हैं उनमें कमी है. आज अगर वो निष्ठावान होते तो जो 3 सांसद नहीं गए हैं उनके साथ वो भी बैठे होते. कोई जाता है तो उसको बहाना चाहिए होता है. जब आपको टिकट चाहिए होता है तो उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छे लगते हैं. जब आपको चुनाव जीतना होता है तो उनकी सभाएं करने के लिए आप आके कहते हैं कि उद्धव साहब आपकी 2-4 सभा होती तो हम चुनाव जीत जाते. जब
0: दही भी खट्टा है और कनेक्शन भी खराब है. ओके, वापस आ गए. बोलिए बोलिए.
2: आप हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो. आप हमारे ऊपर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हो? आपको जाना है, आप राजी खुशी जाओ, बहाने मत बनाओ. हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, हम उसको संभाल लेंगे. आप कौन सी निष्ठा की बात करते हो? अरे आपकी तो जन्म ही 2022 में हुआ है. आप इसके पहले तो थे ही नहीं. आपकी तो बहुत बड़ा व्यूअरशिप है एनडीटीवी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है आज हमारे लोग आपके पास चले गए, उनको ले लो, खुश रहो, आबाद रहो, ये जो तीन बच्चे हैं इनको कब तोड़ोगे? कोई तारीख अगर दिमाग में हो, कोई सोच हो, क्योंकि जब नाराज है तो ये भी नाराज हो जाएंगे, नाराज होंगे तो सब हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के सब हो जाएंगे।
0: नहीं नहीं, यानी कि वो तैयार है टूटने के लिए।
2: लोगों के पास जाओगे, कहोगे भैया आप भी तो नाराज हो जाओ,
0: अभी तो सबसे ज्यादा नाराज संजय राउत दिखाई दे रहे हैं।
2: अगर सेवकों को भी तोड़ेंगे, विधायक को भी तोड़ेंगे, नहीं नहीं आप सुनिए पहले, देखिए लॉजिक समझिए, इनको अपनी पार्टी महाराष्ट्र में बढ़ानी है। अब विडंबना देखिए कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, 7 और 6 मिलाएं तो 13 होती है एकनाथ शिंदे की, जिस पार्टी का पूरे विश्व में डंका बसता हो बीजेपी का, वो छोटी होकर 9 हो गई और एकनाथ शिंदे की पार्टी 13 हो गई। वाह, तो ये जो राजनीति है सबको समझ में आ रही है देश को। ठीक है, कुछ लोग बोल पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल पा रहे हैं, इसका जवाब देंगे समय पे, जनता देती है जवाब।
0: नहीं, पर टूट क्यों रहे हैं?
2: डिबेट है,
0: जो मेन पॉइंट है वो तो बताइए, टूट हो क्यों रही है? अंदर अंदर की वजह से हो रही है या बाहर की प्रेशर से हो रही है?
2: मैं वही कह रहा हूँ कि टूट का नहीं, अंदर की वजह से कुछ। अरे आपको टिकट दे दिया, आपको सांसद बना दिया, आप जाइए लोगों में काम करिए, आपको क्या उद्धव ठाकरे जी से रोज क्या चिट्ठी लिखवानी है क्या, रोज क्या उनको फूल देना है क्या, ये कौन सा बहाना हो गया? आपको सुरक्षा मिल गई, वाई प्लस लेके अब घूमो, अब मजा करो, आप यही चाहते थे ना, एकनाथ शिंदे जी के पास गए हो, अब आराम करो। लेकिन ये बहाने मत बनाओ कि उद्धव जी संगठन में ध्यान नहीं देते। अरे आपको क्या लेना देना है उद्धव जी संगठन को ध्यान दे ना, उनकी पार्टी है, वो नेता है।
0: ओके, आंसर दिस सुजी बेन, ऑल ऑफ दीज आर एक्सक्यूजेस, दीज आर पीपल हु जस्ट वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ पावर। आंसर दिस एंड आई वांट टू ओपन अप द डिबेट। यस,
1: not at all. These are the class of very aspirational politicians. They are career politicians. They have a constituency to look after. They have their people to look after. When your leader is not accessible, he just sits in on, he is always available on the Facebook, always Facebook live. The MPs first went online and now we have become completely offline. Is it not the time for Shiv Sena to find out why this is happening? Always they blame the other side, no introspection at all, no hitting the ground, and see the contrast. We have Shiv Sena with the Dhanush Baan. We are the Sena. It is in our DNA. We hit the ground, we meet the people. You see Dr. Shrikant Shinde in the heat of Maharashtra, he is roaming the nook and corner of Maharashtra, strengthening the party, talking to the people. Tell me the last time when the prince and the king, the Sardar, moved out of the Matroshri and met the people.
0: Anand Dubey, introspection कीजिए। एक तो कुछ काम नहीं किया आपने, ऊपर से आप गाली गलौच भी कर रहे हैं। और संजय राउत चाहते क्या है? पहले आप सबसे बड़ी जो आज की मिस्ट्री है वो बता दीजिए, उसके ऊपर आप पर्दा उठाइए कि संजय राउत लोगों को मनाना चाहते हैं या उनको धक्का मार के निकालना चाहते हैं।
1: अरे क्या हम डरते नहीं आपकी धमकी से?
0: अभी रहस्योद्घाटन करने वाले हैं आनंद दुबे। संजय राउत क्या चाहते हैं?
2: पद्मजा जी,
0: लेट हिम आंसर, सूजी बहन, लेट हिम आंसर। यस
2: पद्मजा जी,
0: आनंद दुबे,
1: छोटी छोटी बात, धीरे धीरे, और प्लीज कविता मत सुनाए।
2: डीजे डीजे,
0: आप उनकी कविता का हक क्यों मार रही हैं? अभी डेमोक्रेसी विल गेट इनटू डेंजर। गो ऑन आनंद दुबे, यू हैव ऑल द फ्रीडम यू नीड।
2: पद्मजा जी, वन एट अ टाइम, वी आर टू पार्टी, वी आर टू पार्टी, वी आर आवर केस इज गोइंग ऑन इन कोर्ट राइट नाउ। अभी हमें यही नहीं पता कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। मुझे लगता है 100-200 साल बाद जब भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा कि असली शिवसेना कौन थी, नकली कौन थी, तसाद हम नहीं होंगे, बट ठीक है, उस समय देखेंगे। देखिए हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं पद्मजा जी कि संजय राउत साहब की पीड़ा समझिए। वो बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं। ऐसे ही 90 के दशक में कुछ विधायक हमें जब छोड़ के जाते थे तो साहब कहते थे कि अब इनको रस्ते पर मारो पटक पटक के। क्यों? क्योंकि ये हमारे नाम और चुनाव चिन्ह पे चुन के आए हैं। संजय राउत साहब भावनाओं में बह के थोड़ा एक अलग स्टाइल में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना ऐसी कि वो करा रहे हैं। वो क्राई कर रहे हैं कि उनके सामने पार्टी टूट रही है, वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है। सबका अपना एक स्टाइल होता है। अब जिसने कभी संघर्ष नहीं देखा वो क्या जानेगा संघर्ष क्या है। अब जिसने जीवन में 30-30, 40-40 साल पार्टी में काम किया है उसके सामने सब बिखरेगा, तो वो थोड़ा सा आपने अरे
3: तो आपको रैली लेनी चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए मेरे भाई।
2: इनको कहो
3: आप एक चुनाव नहीं जीते,
2: कहो
3: लोगों को गालियां बक रहे हो,
2: कहो
3: किसको गालियां दे रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमने कई जूतियां पहन के रखी है? आप साले हम धमकी दे गए और हम कुछ बोलेंगे नहीं? आ जाइए जरा आमने सामने दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप यार, ये कोई बात है बात करने की? ये कोई तमीज है
2: जी? दोनों तरफ से वही भाषा है, दोनों तरफ से वही भाषा है। कोई धमकी दे रहा है, कोई क्या?
3: You have to maintain a basic decorum. आप समझ जाइए, जो है ना वो भी भाग जाएंगे।
2: आप और हम तो सभ्य, आप और हम तो सभ्य हो सकते हैं। हम तो वी आर लाइक जेंटलमैन, वील टॉक लाइक जेंटलमैन, फॉरगेट ऑल दीस थिंग्स। वी आर डिस्कसिंग
0: आप बहुत ही सभ्य हैं, आप हमेशा शालीनता से बात करते हैं, लेकिन जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि वो एक मोमेंट की उनकी पीड़ा थी, इट वॉज फ्लीटिंग मोमेंट वेर ही अब्यूज्ड, ही मेड श्योर ही ट्वीटेड अगेन. And when he was talking about the protection, the Y plus security given to the rebel MPs, he again tweeted that abusive word. But very interesting thing, and I want to bring in Varun Singh, Ashutosh, and Tuhin Sinha also on this, because there is a very curious coincidence that has emerged in this entire case, the case of the four Sanjays. Now, believe it or not, you've got multiple Sanjays. And you remember in Mahabharata, Sanjay was the sutradhar. He always knew what is happening. He pretty much held the narration, the narrative of the entire Mahabharata together. Dhritaraj ko wahi batate the Sanjay ki chal kya raha hai, ranbhumi mein kya chal raha hai. In this case, you have got three rebels. You've got Sanjay Jadhav, who is from Parbhani. Sanjay Deshmukh, the MP from Yavatmal. And then you have Sanjay Dina Patil, the Mumbai Northeast MP. Let's talk about Sanjay Dina Patil. He, by the way, had been telling people all through yesterday, I'm going to be in today's meeting of the parliamentary party. At the last minute, he didn't turn up. When reporters are calling him up, some of them he's saying, I am there at my daughter's birthday. Then some reporters he told, I'm at my granddaughter's birthday. Ultimately, whose birthday he was at, he's definitely not inside parliament. He also comes from a very strong political family in Mumbai and has been a two-time MP. His father, Dima Patil, was also a formal MLA and a respected trade union leader. Then let's talk about Sanjay Jadhav from Parbhani. Big face of the Shiv Sena in Marathwada and was considered a very trusted aide of Uddhav Thackeray himself. Was part of the Shiv Sena's Sangathan and is a three-time MP from Parbhani. Lately though, people spoke of how he seemed a little disillusioned and had not been attending meetings in Matoshri. And finally, Sanjay Deshmukh, who comes from Yavatmal, was a big player in Vidarbh, was an independent MLA from 1999 to 2009. And then between 2002 and 2004, he was the sports minister in Maharashtra. But there is one Sanjay who is above all of them and has been in the headlines throughout in this entire episode, and that is Sanjay Raut. So it's been a tale of four Sanjays in this entire story of defection. The big question still remains though, Varun Singh, what does Sanjay Raut want? Does he want these MPs to come back, or is he trying to drive the others away when he keeps saying that each one of them is now going to be fought on the streets? Varun Singh.
4: You know, Padmaja, to be very honest, I don't think Sanjay Raut is to be blamed for anything. He is being blamed because he's the one who comes and speaks. Every blame, every person quitting, the blame has to be on Uddhav Thackeray. And it shows the political acumen of Uddhav Thackeray that he, in 2024, after having a setback in 2022, opted and selected these people. He and his son claimed that now we are only going ahead with the Nishtavans. He and his son said now those people whom we are giving tickets have taken an oath. Actually, they had said that they have taken an oath. If you remember during 2024 election Lok Sabha, that they will not abandon Uddhav Thackeray at any point or any juncture. So that means Uddhav Thackeray, who went on distributing tickets to all these people, lacks that political acumen to decide to know who is going to be there with him or not. Blaming Sanjay Raut is like blaming an ant for the fault of an elephant. Sanjay Raut is who? Who is he? He's an MP and a spokesperson. He says and decides, he speaks the tone and language, what his leader says, what his leader asks him to do. Had he not been doing that, we have seen how, what happens under Uddhav Thackeray. A Narayan Rane cannot survive. A Raj Thackeray cannot survive. A Chhagan Bhujbal has to leave party. All these people have left the party only because they didn't toe the line of Uddhav Thackeray, his son and his wife. So the party is run by Uddhav Thackeray. Blaming Sanjay Raut would be as futile as blaming anyone who has nothing to do with politics of UBT. I don't know about Anandji, but Anandji probably also is speaking the line that he has been given by his party high command. He is not speaking what
0: But that is what everyone is supposed to do, right? You are supposed to maintain discipline.
4: That is what I'm saying. So why are we blaming... So Padmaja, that is my question. Why do we blame Sanjay Raut all the time? Sanjay Raut is the person who's driving away the MPs. It is Uddhav Thackeray who's driving away the MPs. Uddhav Thackeray is in...
0: So BJP and Shiv Sena are completely blameless in this. Uddhav Thackeray is sitting in Matushri and driving away his MPs. BJP is just sitting there like a babe in the woods and is doing absolutely nothing, Varun Singh. बीजेपी का मतलब क्योंकि उनकी तरफ एमपीज आ रहे हैं तो बीजेपी कह रही है चलो जी आ जाओ तुम भाग ही रहे हो तो मैं एक चार्टर्ड प्लेन भेज देता हूं
4: द बीजेपी एट द सेंटर माइट बी विनिंग
3: दे आर शुगर बैरल्स दे डोंट नीड एनी चार्टर्ड
4: वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर राइट नाउ बीजेपी इन द सेंटर माइट हैव गॉट एक्स्ट्रा 6 एमपीज बट हियर इन द स्टेट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज क्लियर दैट विद एकनाथ शिंदे reaching the figure of 13 MPs, that is equivalent to the Congress and becoming the biggest party in Maharashtra in terms of Lok Sabha, it anyway impacts the political aspects and the political economics of Maharashtra.
0: Interesting.
4: He's an aggressive leader.
0: Interesting. You know, there is trouble in paradise. We will come to Tuhin Sinha in just a second ki kahin aapne self-goal to nahi kar liya hai Tuhin Sinha. Aapne MPs to le liye hain, but what does this mean for the math of Maharashtra? You have 9 MPs. Eknath Shinde has 13 MPs. Everyone knows in Delhi the number of trips that Eknath Shinde has made and met Amit Shah over here. What does this mean for your government in Maharashtra? We'll come to that in a second, but Ashutosh is back with us. Ashutosh ji, very clear consensus over here that BJP Shiv Sena are just sitting there. They are just looking on as, you know, a helpful hands to what is happening in the Shiv Sena UBT. Now, they are toot-toot ke ja rahe hain, wo pareshan hain, unko galiyan di ja rahi hain. So, they are saying, now, where do we go? तो शिवसेना उनके लिए एक प्लेन भेज देता है नांदेड़ में और कहता है बैठ जाओ इस प्लेन में
5: आई थिंक पद्मजा यू हैव सेड इट प्लेन भेज दो और हम आराम से उसमें चढ़ के आ जाएंगे क्योंकि हम जो है वो संजय राउत से बहुत नाराज हैं या उद्धव ठाकरे से बहुत नाराज हैं और देश के लिए बहुत काम करना है दरअसल हम उद्धव ठाकरे के साथ रहते हैं तो देश के लिए काम नहीं कर पा रहे मतलब ये क्या हो रहा मतलब मजाक है आई थिंक द टाइम हैज कम एंड द पीपल विल नॉट टेक एमपीज एमएलएज एंड And these people seriously, because the kind of logic they are putting in, it's absolutely rubbish. They don't have a country in their heart. They don't have Maharashtra in their heart. They don't have even their constituency in their heart. What is in their heart is their political interest. That's all. Basically nothing else. And I don't subscribe to this logic that Eknath Shinde is getting 13 MPs. So Eknath Shinde, it is going to complicate the politics in Maharashtra. Nothing is going to move. Eknath Shinde will survive till BJP wants him to survive. If the BJP can demolish Uddhav Thackeray and the Thackeray Parivar, it's much, much easier for him to demolish Eknath Shinde. So let's not live in any paradise. Tomorrow, if Devendra Fadnavis wants to have a government of his own without Eknath Shinde, that is doable. That will be done. How many seats, how many MLAs Devendra Fadnavis wants? How many? And let's understand this. BJP doesn't want another Hindutva party in Maharashtra except BJP. And Eknath Shinde growing in stature, claiming to be Hindutva, then he is becoming an enemy of his own politics. And BJP will not tolerate it. Now the BJP is so powerful in Maharashtra that they can form government on their own. And they will. And they will form the government on their own. Forget it. These Ajit Pawars of the world and the Eknath Shinde of the world and Uddhav Thackeray of the world and Sharad Pawars of the world, they will not be in a position to counter and fight with the BJP.
0: Okay, Tuhin Sinha, you're not fooling anyone. Today you're wiping out UBT. Tomorrow you'll wipe out Eknath Shinde. That is the bigger game. And at what cost?
2: Well, good evening, Padmaja. Good evening, everybody. You know,
6: Eknath Shinde ji today represents the real Shiv Sena, the Shiv Sena which stands for the values of Balasaheb Thackeray. So till the time he follows the values of Balasaheb Thackeray, I see, you know, nobody can wipe out this Shiv Sena. As far as BJP and Shiv Sena is concerned, you know, we have an excellent understanding. For 2.5 years between June 2022 and November 2024, they had far fewer seats with than us. And yet Eknath Shinde ji was the CM

0: बीन टोल्ड कि बॉस अगर तुम्हें अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए डेवलपमेंट चाहिए, फंड्स चाहिए तो हमारी तरफ आ जाओ, अब उद्धव ठाकरे के साथ कुछ नहीं मिलेगा. सो बेसिकली इट्स अ कैरेट एंड स्टिक, सम ऑफ देम आर बीइंग टोल्ड कम वी विल मेक यू मिनिस्टर्स, अदर्स आर बीइंग टोल्ड इफ यू स्टे विद उद्धव ठाकरे यू विल गेट नथिंग.
1: नो नो, द रियल रीजन व्हाई देयर इज अ चर्न अमंग यू नो उद्धव ठाकरे's party, why there is a churn among TMC, the inflection point was April when, you know, the obstructionist attitude of these parties came out during the Women's Reservation Bill and Delimitation Bill. From, you know, at the end of the day, the party members are frustrated with the non-performance, with the incompetence of their leaders. Uddhav Thackeray has not been accessible. Tomorrow, my friend Anand Dubey, you know, he was sounding so incoherent today, he couldn't even criticize Sanjay Raut. Tomorrow, Anand Dubey might be quitting the party. So, I am telling you that, you know, people within his party are frustrated with Uddhav Thackeray's unavailability. The fact that he has completely disowned the legacy of Balasaheb Thackeray, even on Waqf Amendment Act, they had opposed us. Even on UCC, they don't seem to be standing, you know, they don't seem to be supporting us. The same applies with other parties like TMC.
0: बताइए आनंद जी, और अभी तो कई ऐसी भी स्टोरीज सामने आ रही हैं जहां पे MPs कह रहे हैं कि हमारे घर में कोई दुख का मौका था तो उद्धव जी ने कॉल भी नहीं किया, अमित शाह और एकनाथ शिंदे का कॉल आया. किसी को फंड्स मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है डेवलपमेंट के. चुनाव लड़ने के लिए पैसे मांगने गए तो उनको कोई मदद नहीं मिली. ऐसी भी स्टोरीज इन रेबल एमपीज की तरफ से बताई जा रही है आनंद दुबे जी. अब करे तो क्या करे आदमी, दुखी प्रताड़ित हो गए आपकी पार्टी.
2: देखिए ये सब नहीं, ठीक कोई बात, हम मान सकते हैं कि आप असंतुष्ट हैं, हम मान सकते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन आइए ना हमें बताइए ना, ये चोरी छुपे क्या, ये छह आदमी कहाँ हैं, किस रिसोर्ट में हैं, किस हवाई जहाज, ये सब क्यों?
0: वो कह रहे हैं उन्होंने बताया,
2: ये उद्धव साहब
0: हम कह रहे हैं वो गए बार बार उद्धव जी के पास,
2: छोड़ रहे हैं, कहाँ कौन बताया, किसने बताया?
3: आनंद जी, आनंद
2: तो आप सब कहानियां गणन कहानी
3: जर्नलिस्टों का फोन,
2: देखिए लाइफ में लोग नाराज होते हैं,
3: लोगों का फोन,
2: लोग पार्टियां बदलते हैं,
3: उद्धव ठाकरे अगर
2: पार्टी छोड़ते हैं लेकिन वो व्यवहारिक ढंग से जाते हैं.
0: वरुण सिंह,
3: आपने कितने MPs को खुद फोन किया?
2: जो नेता
3: आनंद जी,
2: ठाकरे जिसे मिलना
3: चाहिए, आप स्पोक्सपर्सन है, आपने 6 MPs जो जा रहे थे, ये 4 दिन से न्यूज चल रहा है, आपने कितने MPs को खुद फोन किया जो 6 लोग जा रहे थे? संजय दीना पाटिल तो आपके घर के बड़े नजदीक रहते हैं, उनको भी आपने फोन करके पूछा क्या?
2: अरे हाँ हाँ, तो वो तो अब आप सुनिए ध्यान से, एक मिनट
3: है, आप मुझे
2: संजय दीना पाटिल जी का, अरे पहले सुनिए तो, पहले सुनिए पद्मजा जी,
0: बोलिए बोलिए.
2: ऐसा डिबेट मेरी आदत नहीं है, ये थोड़ा सा मेरा एक व्यवहार नहीं है, एक तरफ ही बात, या तो उनकी बात पहले हो जाने दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ.
0: बोलिए बोलिए.
2: लोग ताकत में बैठे हैं, उनके पास सत्ता है, मजबूत है, पहले उनको बुलवाइए, कमजोरों को, गरीबों को लास्ट में बुलवाइए. कोई
0: नहीं, यहाँ पे कमजोर की आवाज पहले सुनाई देती है. बोलिए आनंद जी. हाँ
2: पद्मजा जी, हाँ हाँ पद्मजा जी, संजय दीना पाटिल जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे मित्र हैं, आज से नहीं 20 साल से. उन्होंने कल एक बयान जारी किया था कि हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी पार्टी की जो मीटिंग है पार्लियामेंट्री बोर्ड की वाली, जो पार्लियामेंट में जो ऑफिस है, मैं उसमें शामिल होऊंगा. अब नहीं आए, क्या करें, अब क्या करें, कहाँ रोए जाके? हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमें आश्वासन दे सकते हैं, लास्ट में आप पलटी मार जाएंगे तो हम क्या करेंगे,
0: क्या करें? वरुण सिंह, आंसर दे, देन आई विल गो टू सूजी बेंशा एंड आशुतोष. यस
3: आनंद जी, आपने आपने आपने किसके थ्रू
2: सब मनगढ़ंत कहानियां, ये फिल्मी बाजी, ड्रामे बाजी, ये सब.
3: मैंने तो खुद ट्वीट किया था कि उन्होंने कह दिया अपने फॉलोअर्स को कि मैं शिंदे सेना ज्वाइन कर रहा हूँ. आपने, मैंने सवाल से भी
2: ट्वीट ट्वीट पे देश नहीं चलता, ट्विटर पे 2 करोड़ लोग हैं देश के, 140 करोड़ की आबादी है. ये ट्विटर ट्विटर मत खेलिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये फेसबुक यूनिवर्सिटी, ये ट्विटर,
3: ये मुट्ठी भर जवाब दे दीजिए. आपने नहीं चलाते,
2: देश किसान चलाता है, देश मतदाता चलाता है, देश रिक्शा चलाने वाला चलाता है.
0: व्हाट्स योर पॉइंट
2: चलाता है,
0: यू नो. रिपोर्ट सजेस्ट, सेकंड वरुण सिंह, रिपोर्ट सजेस्ट दैट उद्धव ठाकरे tried to reach out to each one of these MPs yesterday. After the press conference, when Sanjay Raut was sitting with Anil Desai, Uddhav Thackeray was on the phone and calling up each one of these guys. They were lying to him. Sanjay Dina Patil till yesterday was telling reporters, मैं तो भाई आ जाऊंगा, मैं parliamentary party की meeting में रहूंगा. वो नहीं थे यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं उसका?
3: See, Padmaja, the job of a reporter is also to read between

0: उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, जाए वो अगर वो जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा फौज।
1: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे?
0: देखेंगे, कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आती।
2: सर जिस दिन
0: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है।
3: लोगों को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके लिए एक्सेसिबल हो, उनके लिए उपलब्ध हो। उभाटा में आज ये बहुत क्लियर है कि वहाँ की जो नेतृत्व है वो लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के जो नेता है वे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी कहते हैं अपने सांसदों के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, एक दिन बाद उनको गालियाँ देते हैं, तीसरे दिन पर कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं। तो ऐसे जिन लोगों की जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत इम्बैलेंस्ड है, उन लोगों के नेतृत्व में कौन काम करना चाहेगा?
4: देखो, ऑपरेशन टाइगर मत बोलना, क्योंकि टाइगर एक ऐसा एनिमल होता है जो आगे से आमने सामने वहां पे लड़ाई करता है। इसको आप ऑपरेशन बाजार डेफिनेटली कह सकते हो। जो वेस्ट बंगाल में का सांसद को फोड़ा गया उसकी कीमत करीबन 50 करोड़ के आसपास पर सांसद थी, और वो करप्शन चार्जेस निकालेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसे बोला गया। और जो महाराष्ट्र में रेट कार्ड है वो करीबन 85 करोड़ रुपीस का है, उसके साथ 250 करोड़ ये डेवलपमेंटल फंड उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हर साल में वहां पे दिया जाएगा, और उसमें से 10-15% करप्शन करके वहां पे 25-30 करोड़ लिए जाएंगे, तो 110-120 के आसपास ये रेट वहां पे निकला है। और लोग कहेंगे मेरे पास ये रेट कैसे आ गए। डेफिनेटली देखो, अजीत दादा के केस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने हमारे लेवल पे वहां पे निकाला जो जेन्युइन है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी जेन्युइन है जो हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे सोर्सेस के माध्यम से आई है।
5: Now shifting our focus to the NEET re-examination that is all set to take place on June 21st after an alleged paper leak in the previous examination. Officials have assured candidates that the re-NEET examination will be conducted as per schedule in a fair manner, urging candidates not to be swayed by rumors of postponement on social media or any kind of paper leak. Union Education Minister Dharmendra Pradhan also chaired a high-level meeting to review the preparations for the NEET UG re-examination. This Education Ministry has also issued and emphasized that there is a need to maintain transparency. They will be issuing full and security measures will be upped, and also students are assured that there will be no leak of any kind, and instead of any leak, the security measures are in place. According to the ministry, the discussions focused on operational preparedness and assurance being implemented at examination centers across the country. According to the information shared by the NTA, the NEET UG 2026 examination will consist of 180 questions carrying a total mark of 720. But students fear of the transparency that is being assured by the government. The students are asking questions about how the paper leak will be controlled. Meanwhile, the Telegram CEO has also challenged the temporary ban put up on the app till June 22nd. Remember, the centre has said while placing an affidavit in the Delhi High Court today that it has been done so to ensure that there is no leak that will take place in the next examination. Meanwhile, the Delhi High Court has reserved its order on the Telegram ban app, but the controversy only spirals as the opposition is questioning the government and its surety of safety. Iran and US has finally signed a peace deal. The deal calls for an immediate ceasefire, respect for Lebanon's sovereignty, and a final agreement within 60 days. It also proposes the reopening of the Strait of Hormuz. In return, Iran is expected to reaffirm its commitment against developing nuclear weapons, except IAEA oversight. IAEA oversight. Trump said that it was not easy to get deal with Iran and confirmed that he has signed the deal. Whereas Iran has also confirmed signing this deal, Iran has said both parties have signed this deal remotely. Meanwhile, Israel has slammed Pakistan for mediation and has said that we do not see Pakistan

0: फौज
1: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे?
0: देखेंगे कोर्ट, चार चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आती।
2: सर जिस दिन
0: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है, देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है।
3: लोगों को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके लिए एक्सेसिबल हो, उनके लिए उपलब्ध हो। उभाटा में आज ये बहुत क्लियर है कि वहाँ की जो नेतृत्व है वो लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के जो नेता है वे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कभी कहते हैं अपने सांसदों के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, एक दिन बाद उनको गालियां देते हैं, तीसरे दिन पर कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं। तो ऐसे जिन लोगों की जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत इम्बैलेंस्ड है, उन लोगों के नेतृत्व में कौन काम करना चाहेगा?
4: देखो ऑपरेशन टाइगर मत बोलना, क्योंकि टाइगर एक ऐसा एनिमल होता है जो आगे से आमने सामने वहां पे लड़ाई करता है। इसको आप ऑपरेशन बाजार डेफिनेटली कह सकते हो। जो वेस्ट बंगाल में सांसद को फोड़ा गया उसकी कीमत करीबन 50 करोड़ के आसपास पर सांसद थी, और वो करप्शन चार्जेस निकालेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसे बोला गया। और जो महाराष्ट्र में रेट कार्ड है वो करीबन 85 करोड़ रुपीस का है, उसके साथ 250 करोड़ ये डेवलपमेंटल फंड उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर साल में वहां पे दिया जाएगा, और उसमें से 10-15% करप्शन करके वहां पे 25-30 करोड़ लिए जाएंगे, तो 110-120 के आसपास ये रेट वहां पे निकला है। और लोग कहेंगे मेरे पास ये रेट कैसे आ गए? डेफिनेटली देखो अजीत दादा के केस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने हमारे लेवल पे वहां पे निकाला जो जेन्युइन है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी जेन्युइन है जो हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे सोर्सेस के माध्यम से आई है।
5: Now shifting our focus to the NEET re-examination that is all set to take place on June 21st after an alleged paper leak in the previous examination. Officials have assured candidates that the re-NEET examination will be conducted as per schedule in a fair manner, urging candidates not to be swayed by rumors of postponement on social media or any kind of paper leak. Union Education Minister Dharmendra Pradhan also chaired a high-level meeting to review the preparations for the NEET UG re-examination. This Education Ministry has also issued and emphasized that there is a need to maintain transparency. They will be issuing full and security measures will be upped, and also students are assured that there will be no leak of any kind, and instead of any leak, the security measures are in place. According to the ministry, the discussions focused on operational preparedness and assurance being implemented at examination centers across the country. According to the information shared by the NTA, the NEET UG 2026 examination will consist of 180 questions carrying a total mark of 720. But students fear of the transparency that is being assured by the government. The students are asking questions about how the paper leak will be controlled. Meanwhile, the Telegram CEO has also challenged the temporary ban put up on the app till June 22nd. Remember, the centre has said whilst placing an affidavit in the Delhi High Court today that it has been done so to ensure that there is no leak that will take place in the next examination. Meanwhile, the Delhi High Court has reserved its order on the Telegram ban app, but the controversy only spirals as the opposition is questioning the government and its surety of safety. Iran and US has finally signed a peace deal. The deal calls for an immediate ceasefire, respect for Lebanon's sovereignty, and a final agreement within 60 days. It also proposes the reopening of the Strait of Hormuz. In return, Iran is expected to reaffirm its commitment against developing nuclear weapons, except IAEA oversight. IAEA oversight. Trump said that it was not easy to get deal with Iran and confirmed that he has signed the deal. Whereas Iran has also confirmed signing this deal, Iran has said both parties have signed this deal remotely. Meanwhile, Israel has slammed Pakistan for mediation and has said that we do not see Pakistan as a positive negotiator. It depends on the Americans. Israel is not part of these negotiations. Take a look at the reactions.
6: This was not easy, I can tell you.

0: Sena has taken action against the rebels, issuing a show cause notice for skipping this parliamentary meeting. Meanwhile, the security cover outside two rebels' residence has been tightened, while some of these MPs, as per sources, have been shifted to Rajasthan's resort. Take a look at the reactions coming in.
1: उनको एमपी बनाने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता है, जो सड़क पर अब उतरे हैं और उतरते रहेंगे. उनके घर उनको घर में रहना मुश्किल होगा. मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए. जाए वो अगर वो जाएंगे तो वहाँ भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा, फौज.
2: सर कोर्ट का भी रुख करेंगे?
1: देखेंगे. कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आती.
3: सर
1: उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है. देश में लोकतंत्र का जो धज्जिया उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है.
4: लोगों को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो उनके लिए एक्सेसिबल हो, उनके लिए उपलब्ध हो. उभाटा में आज ये बहुत क्लियर है कि वहाँ की जो नेतृत्व है वो लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है. दूसरी तरफ उनके जो पार्टी के जो नेता हैं वे असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं. कभी कभी कहते हैं अपने सांसदों के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगाते हैं, एक दिन बाद उनको गालियां देते हैं, तीसरे दिन पर कहते हैं कि वे हमारे साथ हैं. तो ऐसे जिन लोगों की जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत इम्बैलेंस्ड है, उन लोगों के नेतृत्व में कौन काम करना चाहेगा?
5: देखो ऑपरेशन टाइगर मत बोलना, क्योंकि टाइगर एक ऐसा एनिमल होता है जो आगे से आमने सामने वहां पे लड़ाई करता है. इसको आप ऑपरेशन बाजार डेफिनेटली कह सकते हो. जो वेस्ट बंगाल में खास सांसद को फोड़ा गया उसकी कीमत करीबन 50 करोड़ के आसपास पर सांसद थी, और वो करप्शन चार्जेस निकालेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसे बोला गया. और जो महाराष्ट्र में रेट कार्ड है वो करीबन 85 करोड़ रुपीस का है. उसके साथ 250 करोड़ ये डेवलपमेंटल फंड उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हर साल में वहां पे दिया जाएगा, और उसमें से 10 से 15% करप्शन करके वहां पे 25 से 30 करोड़ लिए जाएंगे. तो 110-120 के आसपास ये रेट वहां पे निकला है. और लोग कहेंगे मेरे पास ये रेट कैसे आ गए. डेफिनेटली देखो अजीत दादा के केस में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमने हमारे लेवल पे वहां पे निकाला जो जेन्युइन है. तो ये इन्फॉर्मेशन भी जेन्युइन है जो हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे सोर्सेस के माध्यम से आई है.
0: Now shifting our focus to the NEET re-examination that is all set to take place on June 21st after an alleged paper leak in the previous examination. Officials have assured candidates that the re-NEET examination will be conducted as per schedule in a fair manner, urging candidates not to be swayed by rumours of postponement on social media or any kind of paper leak. Union Education Minister Dharmendra Pradhan also chaired a high-level meeting to review the preparations for the NEET UG re-examination. This Education Ministry has also issued and emphasized that there is a need to maintain transparency. They will be issuing full and security measures will be upped, and also students are assured that there will be no leak of any kind, and instead of any leak, the security measures are in place. According to the ministry, the discussions focused on operational preparedness and assurance being implemented at examination centers across the country. According to the information shared by the NTA, the NEET UG 2026 examination will consist of 180 questions carrying a total mark of 720. But students fear of the transparency that is being assured by the government. The students are asking questions about how the paper leak will be controlled. Meanwhile, the Telegram CEO has also challenged the temporary ban put up on the app till June 22nd. Remember, the centre has said while placing an affidavit in the Delhi High Court today that it has been done so to ensure that there is no leak that will take place in the next examination. Meanwhile, the Delhi High Court has reserved its order on the Telegram ban app, but the controversy only spirals as the opposition is questioning the government and its surety of safety. Iran and US has finally signed a peace deal. The deal calls for an immediate ceasefire, respect for Lebanon's sovereignty, and a final agreement within 60 days. It also proposes the reopening of the Strait of Hormuz. In return, Iran is expected to